सामिन इन बर्फानी सैयारों की सतह गैसी सैयारों की तरह ठोस नहीं है। यूरेनस और नेपच्यून गैसों पर मुश्तमिल लेकिन इन गैसों के अंदर मौजूद अनासर की वजह से गैसी सैयारों से मुख्तलिफ सैयारे हैं। इन बर्फानी सैयारों की सतह बर्फ से बनी हुई सख्त सतह नहीं है बल्कि बर्फानी अनासर इनके इंतहाई गर्म मरकजे के गिर्द एक मोटी तय की शक्ल में पाए जाते हैं। वुईगर 2 नामी ड्रोन खलाई गाड़ी के इनकी सतह पर उतरने के बाद से निज़ाम शमसी के ये दो बर्फानी दियो हैकल सैारे तहकीकी और तजियाती मौजू बन गए हैं। सामिन इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि

रहा है जबकि रूस यूक्रेन जंग ताहाल जारी है। एर्दोगन ने नोट किया कि खत्ता मुतअद्दद तनाजात के दबाव में है। उन्होंने ये भी कहा कि गुस्सा लुबनान में खूनरेजी जारी है। अमरीका ईरान के दरमियान करार से जारी तनाव मुज़ाकरात के चक्कर में एक तारीखी मोड़ आने का दावा किया गया है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान मुतअहदा मुतन तैयार है के बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमने एक शानदार मुआहदा किया है कि इशारों से तेज़ी पकड़ने वाले अमल के दौरान में इस पर मौजूद शरारत तौफीक का इस्लामाबाद मुआहदे की तफसीलात वाज़ह होना शुरू हो गई हैं। तहरान के नुमाइंदे हारून आईकाच और वाशिंगटन के रिपोर्टर तूना शान की तरफ से मिलने वाली मालूम के मुताबिक दोनों मुल्क के दरमियान सफारती रबते मुतफिक का जाब्ते के मरहल तक पहुंच गए हैं। तमाम चोरी मवाद की तलब की जाने ईरान के अंदर सियासी नुकता नजर के अख्तलाफात हतमी दस्तखत से पेशतर सूरत को नाजुक रखे हुए हैं। ईरान से खारजा बाज इराकची के इस मुसदे के हवाले से जिसे इस्लामाबाद मुआहदा कहते हैं तेहरान की जान से आने वाली मालूम ईरान की हिकमत अमली सुर्ख लकीरों को वाजह करती हैं। हारून आईकाच के मुताबिक तेहरान सामने सबसे नाजुक मसले यानी चोरी मामले को दूसरे मरहले में रखने की पेशकश कबूल की है। ईरान ने अफसोदा यूनियन के मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर वाज़ह तौर पर इतराज़ किया है। इसकी जगह इस जहरे की शरह अफसोदगी में तहफीक लाने की तजवीज़ दी है। अपने हरमुज को तजारत नकलोमल के लिए खोलने का अंदिया दिया गया है ताहम सिक्योरिटी का सबका दर्जा बहाल नहीं होगा। इससे ईरान ओमान के कंट्रोल में रखे जाने की शर्त रखी गई है। इसराइल लुबनान में हमलों समेत इलाके के तमाम मुहाजों पर जंग बंदी यकीनी बनाना तेहरान की तरजीहत में शामिल है। इस अमल के दौरान ईरान के बैंकों में निजाम में मौजूदा माली सासों की वापसी का भी हदफ मुकर्रर किया गया है। तूना शान की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन से रहा एक आला अमरीकी एहलकार की बुनियाद पर सामने आने वाला 5 नकाती मनसूबा दर्जे से नकात पर मुश्तमिल है। जोहरी मवाद की मुंतकली अमरीका जोहरी जहरी के तलब ईरान से बाहर मुंतकिल किए जाने पर मुसर है। जोहरी प्रोग्राम का खात्मा प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का मुतालबा मौजूद है। मुताबिक शर्ती वापसी मुंजमद फंड्स को जात करने के मुआहदे की मुकम्मल पासदारी शर्त रखी गई है। अपने हुरमुस मुसासरा खत्म किया जाए और अपना को मुकम्मल तौर पर खुला रखा जाए। दहशतगर्दी की माली मुआवनत इलाकई ग्रुपों को फ्राहम करदा माली इमानत को खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। अगर ये मुआहदा तय पा गया तो ईरान की बैन अवी निजाम मुकम्मल शमूलियत का रास्ता खोलने का मनसूबा है। सेंटकॉम के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने अपने हुरमुज से गुजरने वाले तजारती जहाजों को निशान बनाने की कोशिश में मुतअद्दद यकतरफा हमला और ड्रोन लॉन्च किए। आपने ट्रैफिक का बहाव बिला रुकावट जारी है जबकि अमरीकी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 4 घंटों में तमाम ड्रोन को मार गिराया। सेंटकॉम ने बताया कि बैन अवी तजारती राहदारी आमदरफ्त के लिए खुली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल जोर देकर कहा था कि ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल होने के करीब है। मुफाहमत की तफसीली मतन पर आखिरी काम जारी है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में कहा था उनका क़याम कभी इतना करीब नहीं था। ईरानी मुसर खारजा अब्बास इराकची का कहना है कि जब मुसबदा मुआहदा हतमी हो जाएगा तो उसे अमरीका के साथ दूरदराज तरीके से दस्तखत किया जाएगा। इराकची ने जुम्मे की रात सियासी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में कहा जैसे ही हमारी मुज़ाकरात के आखिरी मराहल मुकम्मल होंगे मुआहदा दस्तखत ईरान के लिए पेश किया जाएगा। दस्तखत इब्तदाई तौर पर डिजिटल तौर पर होंगे। हर फरीक अलग से दूर दराज से दस्तखत करेगा। इसके बाद ईलान किया जाएगा। इस मुफाहम याददाश्त दोनों फरीकान ने दस्तखत कर दिए हैं। यह आने वाले दिनों में हो सकता है। इराकची ने पहले कहा था इस्लामाबाद मुफाहमतनामा के नाम से मंसूब करता वो फ्रेमवर्क जिसका मकसद 28 फरवरी को शुरू होने अमरीका के साथ जंग को ख़त्म करना है कभी भी इतना करीब नहीं था। जुमरात को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान पर मुजफ्फर हमलों को मंसूख कर दिया है। दावा किया कि जंग खत्म करने के लिए मुआहदा जल्द दस्तखत किया जा सकता है। अपने इंटरव्यू में इराकची ने कहा कि वो फ्रेमवर्क की तफसीलात तब जाहिर करेंगे जब वो खत्म हतमी हो जाएगा और अभी तफसीलात में जाना मुआहदे के दस्तखत की राह को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा मुसबदा मुआहदे में 13 अप्रैल से नाफिज ईरान के बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी मुहासरे के खात्मे मुजी के हुरमुज के इंतजाम के मुतलक बंदोबस्त शामिल है। हुरमुज के जरिए ट्रैफिक जो आलमी समंदरी रूट्स के लिए अहम है 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के साथ जंग छिड़ने के बाद से ईरानी कंट्रोल में आ गई थी। जनूबी फिलिपाइन में आने वाले ताकतवर जल्जिले में हलाकतों की तादाद 61 तक पहुंच गई है तो इमदादी टीमें मैंडानाओ के सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं।
دفتر سول ڈیفنس نے اب تک کو بتایا متاثرہ علاقوں سے مزید لاشیں نکالنے کے بعد ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے. جی ایم اے نیوز براڈ کاسٹر نے کہا 33 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 1221 افراد زخمی ہوئے ہیں. حکام نے بتایا کہ تلاش بچاؤ بازیابی کے آپریشنز جاری ہیں کیونکہ ایمرجنسی عملہ لینڈ سلائڈز اور منہدم شدہ ڈھانچوں کے باعث پھنسے متاثرین کی تلاش تلاشوں کی

बाजियाबी कर रहा है। फिलिपाइन के अखबार फिलिपीन डेली इंक्वायरर के मुताबिक तकरीबन 9,393 अफराद इनकलाब मराकस में मुकीम है, जबकि 54,274 ने सरकारी पनाह गाहों के बाहर रिश्तेदारों दोस्तों के बाहर आर्जी पनाह दी है। नुकसान के जायजों के मुताबिक 8,865 घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 38,691 घर जुजवी तौर पर नुकसान सदे हैं। बाद झटके गैर मुस्तहकम इमारतें खराब सड़कों रेस्क्यू कोशिशों में रुकावटें पैदा करती हैं, जिसकी वजह से इमदादी कारकुनों के लिए बास मुतासरा बस्तियों तक रसाई मुश्किल हो गई है। हफ्ते के शुरू में मैंडानाओ के साहिल के करीब 7.8 की शिद्दत का जलजला आया था। भारतीय सूबे आसाम के शुमाल मशरकी इलाके में एक एयरफोर्स अड्डे पर लैंडिंग के दौरान एक ट्रांसपोर्ट तैयारे के गिरने के नतीजे में 5 भारतीय फजाई के अहलकार हलाक हो गए। फजाई ने हफ्ते को बताया, रूसी साख्ता अंतोनोव AN-32 तैयारा हट इलाके में मामूल की परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। भारतीय फजाई ने एक्स पर लिखा, हादसे के मुकाम का तयन तदाई तहकीकत इस वक्त जारी है। उसने मजीद कहा, हादसे की वजह जांचने के लिए एक इंक्वायरी कोर्ट तश्कील दिया जा रहा है। न्यूज चैनल NDTV ने हादसे के मुकाम की तस्वीर नशर की, जिनमें स्याह धुएं का घना बादल दिखाई दे रहा था। AN-32 एक जुड़वा इंजन टर्बो प्रूफ तैयारा खासतौर पर बुलंद इर्तफा और इंतहाई मौसमी हालात में बेहतर कारकर्दगी के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय फजाई में से तकरीबन 100 तैयारे मुल्क के सबसे दूर तादा पहाड़ी इलाकों में फौजी सामान शहरी इमदाद के लिए इस्तेमाल करती है। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। भारत ने अमरीकी हमलों के नतीजे में अपने सैनिक की हलाकत पर एहतजाज किया। हिंदुस्तान से खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीकी खारजा मार्को रूबियो के साथ फोन पर बात की, ताकि ओमान के साहल पर 3 तजारती बहरी जहाजों पर अमरीकी हमलों पर एहतजाज किया जाए, जिनमें ज्यादा अमला हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल था। हमलों में 3 हिंदुस्तानी जहाजरान मारे गए। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में जयशंकर ने कहा, उन्होंने इन हमलों के हवाले से रूबियो को हिंदुस्तान की सख्त एहतजाज से आगाह किया है। उन्होंने कहा, तजारती जहाजों पर इस तरह के मोहल्लक किसी भी तरह से जायज नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, जुमे के रोज ओपन AI को 42 अमरीकी रियासती अटॉर्नी जनरल्स की तहत की जनरल से एक समन भेजा गया है, जिसमें इसके कारोबारी तरीकाकार और सार्फिन पर असरा से मुतलक दस्तावेजात तलब की गई हैं। अखबार ने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की जान से भेजे गए समन को शाया किया है, जिसमें ओपन AI से मुतलबा मालूम की तफसील के मुतालबा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक तलब किए जाने वाले दस्तावेजात कंपनी की सरगर्मी की वसी रेंज से मुतलक हैं, जिनमें इश्तहारा सार्फिन की शमूलियत बरकरार रखने के तरीके सार्फिन के डाटा और सेहत के डाटा का हैंडलिंग नाबालिग बुजुर्ग अफराद से मुतलक सरगर्मियां मॉडल की चापलूसी कंपनी की पॉलिसियां शामिल हैं। ओपन AI ने इस कानून कार्रवाई के जवाब मीडिया को एक बयान जारी किया। कंपनी के एक तर्जमा ने कहा, मसनू जहानत एक नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी है, हर रोज इसके फायदे लोगों तक जिम्मेदारी के साथ महफूज अंदाज में पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल है। रियासती अटॉर्नी जनरल की जान से उठाए गए खदशात को संजीदगी से लेते हैं। इस माह के अवाल में फ्लोरिडा पहली रियासत बनी जिसने ओपन AI के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सैम अल्टमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस दावे में कहा गया कि ओपन AI और अल्टमैन ने जानबूझ कर गैर महफूज मसनुआ जारी किया, इंतबाहत को नजरअंदाज किया कि यह सार्फिन को नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेस एक्स ने अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होते रिकॉर्ड तोड़ डाला। एलन मस्क की रॉकेट सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्पेस एक्स ने अपनी तवील इंतजार की इब्तदाई अवामी पेशकश के बाद नैसडेक पर तजारत शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने हिस्से से $135 में फरोख करके तकरीबन $75 बिलियन इकट्ठे किए। इस कीमत का तयन IPO के दौरान स्पेस एक्स की कीमत तकरीबन $170 ट्रिलियन है। स्पेस एक्स के हिस्से ने अपने पहले तजारती दिन को 19% से ज्यादा यानी $160.95 पर बंद किया, जिससे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.1 ट्रिलियन हो गई है। अमेरिका ने वर्ल्ड कप का आगाज पैराग्वे के खिलाफ शानदार फतेह के साथ किया। अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप में अपने इब्तदाई मैच में पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त देते हुए मजबूत आगाज किया है। लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पेशते मेजबान अमेरिका के लिए रंग बिरंगी इब्तदाई तकरीब मुनाकिद हुई। अमरीकी टीम ने तेजी से खेल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। क्रिश्चियन पुलिस के क्रॉस के बाद पैराग्वे के दिफा में गलती की मिला पर डेमियन बोबेटा लीना ने 7वें मिनट में खुद ही अपने गोल को कर लिया।
वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी रखने बरतानवी कौमी फुटबॉल टीम के कैंप के सरसमान को फ्लोरिडा के तरबीती मरकज से मजदूरी की प्रैक्टिस तनसीबात अब मुंतकिल करते हुए चोरों ने निशाना बना डाला। चोरी शुदा सामान में टीम के सितारों के वजूद है शामिल है जो टूर्नामेंट में पहनेंगे। इसके अलावा सरकारी टूर्नामेंट के बॉल्स और तकनीक की तरबीत का साजोसमान भी मौजूद है। इस वाके के बाद कैंसास सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने वसीफ मलिक तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकाम ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात ताकुब के साथ दो मुश्तबह अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, इसे तफ्तीश जारी है। इंग्लैंड फुटबॉल फेडरेशन मकामी पुलिस के साथ रबते में रहकर यह कोशिश कर रही है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पेशतर तमाम सामान मुकम्मल तौर पर बाजियाब कर लिया जाए। सन मर्बी थॉमस ट्यूखल की क्यादत में बरतानिया ग्रुप के पहले मैच में बुध को डलास में क्रोशिया के मध्य मुकाबला आएगा। 1966 में पहली मरतबा पैराडाइज टाइटल जीतने के अजम के साथ ये इंतहाई मोहतात मनसूबाबंदी के साथ टूर्नामेंट की तैयारी करने वाली बरतानवी टीम इस चोरी के वाक़ से तकनीकी अमला और स्टाफ के मनसूबों में शदीद संजीदा हल का शिकार हो गई है। टीम ने फ्लोरिडा कैंप में तैयारी मैचों में जो कारकर्दगी और खिलाड़ियों को जो हौसला दिखाया था सिक्योरिटी खला की वजह से मध्यम पड़ गए हैं। इंग्लैंड फुटबॉल फेडरेशन मामले पर बाजाब्ता बयान देने से गुरेज किया। अब यह सवाल यह है कि हफ्ते की दोपहर होने वाली पहली ट्रेनिंग से बेशतर जूतों दिगर सरसमान की कमी किस तरह पूरी की जाएगी। इसके साथ इस तरह तुर्किया से खबरें खत्म। सामिन हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं। हमने जैब्स देनी सेकी के आवाज में एक तुर्की नगमा समाप्त फरमाइए।

तुर्की का फखर जंगी तैयारा कान अपने नए रूप में सामने आ गया है। पहले से छोटा, ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा जदीद, दो नए प्रोटोटाइप तैयार हैं। दुश्मन के रेडार पर एक शहद की मक्खी जितना छोटा नजर आने वाला यह देव हैकल तैयारा 2029 में आसमानों पर राज करेगा। कान के नए प्रोटोटाइप्स और तमाम तफसीलात अब यहां मौजूद हैं। आज हम तुर्क दिफाई सनत के फखर के मंसूबे कान की ताजा तरीन पेशरफ शेयर करेंगे। अपनी पहली परवाज से पूरी दुनिया को हैरान करने वाले इस पांचवी नस्ल के